listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: खास मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

0: Denisha. Denisha.
1: Denisha. Zeeshan Ali ki awaaz mein beautiful track Ishq Ka Way only on Radio Ala 106.3 FM. Denisha ke ji aapke saath bin 10 mornings lekar a very good morning meri jaan. Kya haal chaal hai? Tuesday ka din hai aaj. September 29th. भाई महीना खत्म. हर रोज पिछले आई थिंक एक हफ्ते से मेरा यही चल रहा है, ये महीना भी खत्म हो गया है, साल खत्म होने वाला है बहुत ही जल्दी. पता ही नहीं चला कैसे भाग गए. कुछ कुछ मंथ्स तो ऐसे लगे कि ड्रैग करके लेकर जाने पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ महीने तो ऐसे भागे हैं पता ही नहीं चला. बट दैट्स लाइफ राइट. कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है, कैसा था आपका कल का दिन और अभी क्या कर रहे हैं? अगर वक्त है तो एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग

0: हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी की जोड़ी वापस आ गई है इस गाने से।
1: ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
0: ब्यूटीफुल ट्रैक।
1: सब कहे अरे अरे अरे बगला गया है तू।
0: अमित त्रिवेदी की आवाज में ये मास्टरपीस मधुबाला, जिन्होंने नहीं सुना होगा ना जरूर सुनिएगा, बड़ा सुंदर गाना है।

से ब्यूटीफुल ट्रैक, ये कमाल कमाल के गाने लाइन अप है आपके लिए इस घंटे में, और ढेर सारी बातें करनी है आपसे, पर पहले जानेंगे आपके हाल चाल। 3311 1063 मैसेज कर दो फटाफट से और सुनते रहो रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: calling all visionary brands and business owners. If you create innovative products or services for children, then your biggest stage is ready.
1: Alshak Media Management proudly presents the grand third edition of Kids Expo Qatar 2026
0: at QNCC Hall No. 5.
1: This is your ultimate chance to put your brand in the spotlight and connect directly with thousands of families.
0: From breakthrough toys to educational services, showcase your business on Qatar's biggest platform. Opportunities like this don't wait. Book your exhibition space today and take your business to new heights. Kids Expo Qatar 2026, where your innovation meets the future.
2: Hi guys, this is Jonita Gandhi.
3: Radio Olive, I'm the number one.
2: You are listening to me on Radio Olive.
3: Radio Olive,
2: Gio Bindas.
3: Radio Olive, I'm the number one.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: हर सुबह 6 से 10 हर जिस तन निशा को बिंदास मॉर्निंग में
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
8: इन एसोसिएशन विद
7: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

0: तनिषा
1: तनिषा आतिफ असलम की आवाज में बदलापुर से बेहद खूबसूरत गाना जीना जी ना ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और फिलहाल वक्त हो गया मैसेजेस का. नाजरी जी का मैसेज आया है, कहती है यू आर द फर्स्ट पर्सन आई थिंक अबाउट व्हेन आई ओपन माय आईज एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माय लाइफ. सो स्वीट एंड दैट इज सो नाइस ऑफ यू टू थिंक ऑफ मी. संत जी का मैसेज है, आई थिंक कहीं से तो इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया और पढ़ा नहीं है ना, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ हुआ है. बट थैंक यू नाजनी जी फॉर द मैसेज. संत जी का मैसेज है, कहते हैं गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ ब्यूटिफुल डे अहेड, मे इट बी फिल्ड विद जॉय पॉजिटिविटी एंड लिटिल मोमेंट्स दैट मेक यू स्माइल. एम्ब्रेस टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू संतु जी. एंड शशिकांत जी का मैसेज है, हैप्पीनेस इज द ओनली थिंग दैट मल्टीप्लाइज व्हेन यू शेयर इट. ट्रू, सो ट्रू. एंड यू नो सैडनेस और वरीज आर द ओनली थिंग विच डिक्रीजेस जब आप शेयर करते हो, क्योंकि दिल हल्का हो जाता है. जी हाँ, तो वो इतना भारी नहीं लगने लगता. एंड कल्स का मैसेज है मुझे, गुड मॉर्निंग ऑलिव, गुड मॉर्निंग कल्स. एंड वी हैव अ मैसेज फ्रॉम जुल्फी जी, द ब्राइट अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू, वर्क हार्ड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह सुपर सून वी ऑल विल. एंड इस्तेयाक अंसारी जी का मैसेज भी है, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, यू टू. अबरार जी का भी गुड मॉर्निंग आया है जी. एंड गुड मॉर्निंग टू एवरी वन आउट देयर हु इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ. आई होप यू गाइस हैव एन अमेजिंग डे एंड इट इज वर्ल्ड हार्ट डे. आई होप आप अपने दिल का ख्याल रख रहे हैं. बात करेंगे इस बारे में. फिलहाल सुनते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर. स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

फिदा मूवी से नजर नजर ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. बिलाल जी का मुझे गुड मॉर्निंग आया है, सुबह बखैर. आई थिंक मैंने सही बोला है. गुड मॉर्निंग बिलाल जी, आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे. एंड यार कल ना एक चीज़ मैंने ऐसे रियलाइज करी, मतलब हर थोड़े दिन में होती है, देन आई वर्क ऑन दैट एंड देन मैं फिर से भूल जाती हूँ. आई थिंक दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर. सो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बॉदर करती है ना, जिनका एक्चुअली हमसे कोई लेना देना है नहीं, इट्स जस्ट यू सी वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट आइलैंड्स, और आपको लगता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चलना चाहिए. तो ऐसा नहीं हो सकता है ना. आई हैव टू, मुझे भी खुद को रिमाइंड कराना पड़ता है कि बहन, द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड यू. जस्ट बिकॉज तुम्हें ये सही लग रहा है तो दुनिया ऐसे करेगी, ऐसे नहीं होता है. सबका अपना सही और सबका अपना गलत होता है. सो यू नो, इफ आई एम सेइंग कि नहीं भाई ये तो गलत चीज़ है, ज़रूरी नहीं है ना. हो सकता है कि सामने वाले के नज़रिए से ये बात सही हो जो वो कह रहे हैं और कर रहे हैं. सो या दैट्स वेयर आई एम स्टक अगेन, कि किस तरह से अवॉइड और इग्नोर किया जाए इन छोटी चीज़ों को जो एक्चुअली यू नो मुझे बॉदर नहीं कर रही है, यू नो मेरे सराउंडिंग में हो रही है एंड इट डज नॉट अफेक्ट मी एट ऑल. पर मुझे दिख रहा है, वो मेरी आई साइट में आ रही है, तो मुझे वो वहाँ दिक्कत हो रही है कि यार ये गलत क्यों हो रहा है. तो उसके लिए बोलना ज़रूरी नहीं होता हर बार. यू नो दे से ना, इट्स इफ इट्स नॉट योर सर्कस, इट्स नॉट योर मंकीज, देन डू नॉट बॉदर यू नो ट्राइंग टू ट्रेन देम और टेम देम. वो आपका काम नहीं है, दे विल डू दैट बाय देयर ओन. आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस टू यू राइट नाउ, बट एक डिलेमा में मैं चल रही हूँ. तो क्या मेरी मदद कर पाओगे आप? क्या आप मुझे बताओगे व्हाट आर दोस ट्रिक्स यू फॉलो जब कोई चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, लाइक वट एवर योर बिलीव सिस्टम इज उसके हिसाब से नहीं चल रही हैं, बट देन अगेन इट डज नॉट कंसर्न यू ऑल्सो. तो उसे अवॉइड कैसे करते हैं, उसे इग्नोर कैसे करते हैं? ज़रा मुझे थोड़ी टिप्स दे दो मेरी जान, बहुत ज़रूरत लग रही है इस वक्त मुझे. 3311 1063 पर सेंडिंग के की आवाज़ में ज़रा सी ब्यूटिफुल ट्रैक जनत मूवी से. स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Visionary brands and business owners. If you create innovative products or services for children, then your biggest stage is ready.
2: Al Sharq Media Management proudly presents the grand third edition of Kids Expo Qatar 2026
1: at QNCC Hall Number 5.
2: This is your ultimate chance to put your brand in the spotlight and connect directly with thousands of families.
1: From breakthrough toys to educational services, showcase your business on Qatar's biggest platform. Opportunities like this don't wait. Book your exhibition space today and take your business to new heights. Kids Expo Qatar 2026, where your innovation meets the future.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ.
3: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: Tanisha.
1: आसिम अजहर और का गाना तुम ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. Not so much because crazy humidity हो रखी है, so please अपना ख्याल रखिए मेरी जान, जो भी precautions required है वो लीजिए. And right now the temperature is 32 degrees and it feels like 41 degrees. Back at it. एक दिन की खुशी दी थी इसने हमें कि जो temperature थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है, उसके बाद it was like no bro, you can't be that happy. 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा चलने वाली है और साथ में आज काफ़ी हेजी और काफ़ी हॉट वेदर रहने वाला है थ्रू आउट द डे. 40 डिग्रीज कैन बी द हाईएस्ट एंड 31 डिग्रीज विल बी द लोएस्ट टेम्परेचर. बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दिन में बाहर ना ही निकले तो बेहतर होगा, अवॉइड करें. और अगर बहुत ज़रूरी काम से निकल रहे हैं तो प्लीज़ टेक ऑल द प्रिकॉशंस, भर भर के सनस्क्रीन, बहुत सारा पानी, कहीं भी जा रहे हैं तो पानी तो एनी विच वेज अपने साथ रखिए ही, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड राइट नाउ ना दिस फ्लू बहुत ज्यादा जल्दी कैच कर रहे हैं लोग बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन वेदर. कभी भी कुछ भी हो रहा है ना, कभी ठंडा हो जाता है, कभी थोड़ा सा गर्म लगने लगता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. एंड दैट टू हम यू नो इतने ह्यूमिड वेदर से बाहर से जब अंदर आते हैं सीधा एसी के नीचे है ना, और ठंडा पानी सीधा, तो यही हाल होता है जो मेरा हाल हो रखा है. सो प्लीज़ ये हाल पे आप ना पहुँचे, इसलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें. आप इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए बताती रहती हूँ, ठीक है. और फिलहाल भेज रही हूँ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
0: रेडियो

0: खास मॉर्निंग, खास मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Tanisha.
1: Raghav Chaitanya aur Jonita Gandhi ki awaz mein khasiyat from the movie Chand Mera Dil Honi on Radio All at 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par aur Qatar mein private school fees mein kuch changes aaye hain. So there are categories now. Ministry of Education and Higher Education ne restructure kiya hai private school ki fee categories ke according. So there are low, medium and high fee categories. जो मीडियम फी कैटेगरी है इट इज़ ऑल्सो स्प्लिट इंटू टू टीयर्स. मीडियम फी स्कूल जो है उसका पहला टीयर जो है दे कैन इंक्रीज स्टूडेंट कैपेसिटी बाय 10% अंडर अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम. एक नया क्लासरूम स्टैंडर्ड है 1.7 स्क्वायर मीटर्स पर स्टूडेंट का एंड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड अलाउिंग स्कूल्स टू इंक्रीज ओवरऑल कैपेसिटी बाय 18% विदाउट एक्सपैंडिंग बिल्डिंग्स. Along with that, this will also, create 6,883 additional seats across 46 private schools covering 10 different curricula. 688 of these seats will be allocated to eligible students through social responsibility initiatives. जी हाँ. और एक specialized schools की category भी लेकर आए हैं जो कि support करेगा उन schools को which are offering advanced programs, modern facilities, AI technologies and international partnerships. ये जो specialized school है they may increase the tuition up to 30% depending on their educational quality and compliance with the ministry's criteria. और schools के पास अब freedom है to recruit teachers and staff directly instead of waiting for the prior ministry nominations. So yeah, all in all, Qatar has reorganized private schools by fee level और available seats जो है उनका number बढ़ गया है. Along with that, schools को और ज़्यादा flexibility मिल गई है according to their style of working, according to the quality of education they are giving, and this is really good. प्यार दूसरी बार मूवी से ये गाना गिनी वेट सनी जो फर्स्ट आई थी वो ये सेकंड वाली तो मैंने देखने की जहमत भी नहीं करी है.

बात तो एकदम सही है, दूरियां भी है जरूरी. इट रिमाइंड्स यू कि यू नो द अदर पर्सन हाउ इम्पोर्टेंट और द थिंग्स विच यू हैव मेड योर दूरी फ्रॉम हाउ इम्पोर्टेंट दे आर टू यू. सिंद्रे रेडियो ऑल टू योर बिंदास.

0: हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Here are Paradox ke awaaz mein chhap tilak from the movie Guinea with Sunny 2 only on Radio 11.6.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par aur bhai IT Nagoya 2026 Asian Games jo chal rahe hain is waqt Japan mein हमारा पहला गोल्ड आ गया गाइस. यस, कतर हैज वन इट्स फर्स्ट गोल्ड. बासम हमीदा वन गोल्ड फॉर कतर इन द मेंस 400 मीटर हर्डल्स एंड ही फिनिश्ड द रेस इन 47.82 सेकंड्स. व्हाट, नैरोली बीटिंग जापान्स तेजू गोटू who clocked 47.93 seconds. Seconds ke difference mein bhai pehla gold aaya hamara. Badi khushi ho rahi hai mujhe is baat mein. Ye Hamida ka first Asian Games gold hai after winning silver at previous games. Also Zakaria Ibrahim Al Ahlami ne jeeta hai bronze in men's 3000 meter steeplechase. So overall ye jo do medal hai inko mila kar hamara jo tally hai मेडल्स का वो 7 हो चुका है. 3 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज. दिस इज सो कूल. द गेम्स विल गो ऑन टिल अक्टूबर 4. सो लेट्स सी और कितने सारे मेडल्स हमारी की टीम में आते हैं. सुपर एक्साइटेड अबाउट इट एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ऑल जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. Sounds unbelievable, but it's real.
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक.
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड भी.
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट.
3: लुलू, where the world comes to shop.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
4: इन एसोसिएशन विद
5: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट बीमा.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: निशा
1: चलती चलती मूवी से सोनू निगम की आवाज में गुमशुदा ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड 22nd दोहा जूलियन वॉचेस एग्जीबिशन चल रहा है कतर में. वी नो दैट सितंबर 28 से स्टार्ट हो चुका है DCC में एंड 49 प्लस एग्जीबिटर्स हैं वहाँ पे. मोर देन 500 जूलियन वॉच ब्रांड्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज 30 countries एंड बहुत सारे मेजर ब्रांड्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, जैसे कि अल्फरदान ज्वेलरी, अलमाजू ज्वेलरी, अलिब एंड अली लग्जरी, अमीरी जेम्स, 51 East, अल मुफ्ता ज्वेलरी, ब्लू सलोन एंड अ लॉट मोर. ये जो एग्जीबिशन है इट हाईलाइट्स कतरे डिजाइनर्स विद अ डेडिकेटेड पवेलियन फीचरिंग 6 लोकल टैलेंट्स और साथ ही टर्किश और इंडियन डिजाइनर्स के भी पवेलियंस हैं. ऑल्सो इस बार का जो मेजर एडिशन है वो है क्रिस्टीज का. जी, एक इंटरनेशनल ऑक्शन हाउस है ये. दे आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे विल बी होस्टिंग टॉक्स, वर्कशॉप्स और एजुकेशनल सेशंस. ऑल्सो देर इज दिस न्यू DJWE स्टूडियो एंड वो भी वर्कशॉप, पैनल डिस्कशंस, मास्टर क्लास, ज्वेलरी वॉच टूर्स एंड एंटरप्रेन्योर सेशन होस्ट करने वाले हैं. सो 3rd October तक ये एग्जीबिशन जो है चलने वाली है. सो इफ यू आर एंथुजियास्ट, आई मीन हु डजंट लाइक ज्वेलरी एंड वॉचेस, कम ऑन, एवरीबॉडी डज, राइट? सो डू गो एंड चेक इट आउट. वहां पे आपको यू नो रेयर जेमस्टोन्स, ज्वेलरी, लग्जरी ज्वेलरी, वॉचेस और काफी सारे नए डिजाइन देखने को मिलेंगे फ्रॉम बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स. एंड ऑल्सो इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस यू नो टू नेटवर्क, टू गेट मोर नॉलेज एंड यू नो एक्सचेंज द नॉलेज एंड सपोर्ट द लोकल डिजाइनर्स. सो डू गो एंड चेक इट आउट. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: Doha, get ready for the festive exhibition by Boutique Edge. Jahan duniya bhar ke renowned designers aur labels ek hi roof ke niche with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections. Sana Safdaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 a.m. to 8 p.m. Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion ka extraordinary edit.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
5: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.
4: In association with
5: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

पापा की आवाज में मेरी क्रिसमस से नजर तेरी तूफान ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रिमाइंड करवाया लोगों को एक बार फिर से कि भाई जो प्रायर असेसमेंट और अप्रूवल है वो ज़रूरी है फायरवर्क्स लेज़र या फिर पावरफुल लाइट्स के लिए. जी हाँ, इट इंक्लूड्स फायरवर्क डिस्प्ले, हाई इंटेंसिटी लाइट्स, आउटडोर लेज़र बीम्स, स्काई ट्रैकर्स और सर्च लाइट्स. एंड बिकॉज ये जो एक्टिविटीज़ हैं दे कैन पोटेंशियली अफेक्ट यू नो एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस, एयर नेविगेशन एंड पायलट्स विजन, दैट इज़ वाई इट इज़ मैंडेटरी. So QCA will assess each request and they either will give a no objection or they will approve it with specific condition or restrictions, or they will reject it if it presents an unacceptable safety aviation risk. So jo organizers hain, they are advised to submit applications well in advance, you know, for any of the events they need any of these things, fireworks, high intensity lights, outdoor laser beams. They have to submit the applications and complete the information, so there is enough time for the assessment and coordination. Ye jo requirements hai, they are part of Qatar's aviation safety regulations. You know, certain lightning, laser and pyrotechnic activities already require authorization under QCA regulation. So please follow that. Also, there is another reminder that abhi school shuru ho chuke hai, bahut sare parents jo hain bachcho ko drop karne ke liye jaate hain, pick up karne ke liye jaate hain. And if you're going anywhere else with the kids, so bahut chote bachcho ko front seat pe na bithaye, that is a punishable offense, aapko fine ho sakta hai. So please is baat ka khayal rakhe, अपना और अपनी से अपना और अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखें. और सुनते रहे रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं.
2: अरे क्या हुआ इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है. वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा. सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ. लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग.
4: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
5: Calling all visionary brands and business owners. If you create innovative products or services for children, then your biggest stage is ready.
6: Alshark Media Management proudly presents the grand third edition of Kids Expo Qatar 2026
5: at QNCC Hall No. 5.
6: This is your ultimate chance to put your brand in the spotlight and connect directly with thousands of families.
5: From breakthrough toys to educational services, showcase your business on Qatar's biggest platform. Opportunities like this don't wait. Book your exhibition space today and take your business to new heights. Kids Expo Qatar 2026, where your innovation meets the future.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरजे तमनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदा दस मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट बीमा.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8th November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
2: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं.
3: अरे क्या हुआ इतनी खुशी किस बात की?
4: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है. वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा. सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ. लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स.
5: लुलु, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
6: नमस्कार मैं हूँ आर माधवन. नमस्कार मैं हूँ आर माधवन. आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
0: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

हिमेश शर्मा की आवाज में चलाओ ना नैनो से बांध रहे बोल बच्चन मूवी से ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. कुछ ही देर में जब लौट कर आऊंगी तब दूंगी मैं आपको अजय देवगन की मूवी की जो टिकट्स हैं जो आ रही है इस हफ्ते दृश्यम द कंक्लूजन. लेकिन फिलहाल बात करते हैं जापान की. भाई द वर्क कल्चर एंड यू नो द एटिकेट्स द एथिक्स पीपल फॉलो देयर इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. लाइक आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस आई हैव नेवर बीन टू जापान आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पीपल दैट यू नो काफ़ी पोलाइट लोग हैं काफ़ी काम लोग हैं एंड उनके जो वर्क एथिक्स हैं द वे दे वर्क एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दे हैव दे आर सो लॉजिकल एंड सेंसिबल एंड सो ब्यूटिफुल एंड हार्ट वार्मिंग एज वेल. यस सो आई केम अक्रॉस अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम कि जब मशीन्स जो हैं बहुत लंबे समय तक किसी फैक्ट्री में रहती है किसी यू नो कंपनी में रहती हैं एंड व्हेन इट्स टाइम टू लेट देम गो उनके रिटायर का वक्त हो गया है. मशीन्स आई एम टॉकिंग हियर ओके. ह्यूमंस का तो हमें पता है काफ़ी बात कर ली हमने कि किस तरह से ट्रीट करते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू मशीन्स व्हेन अ मशीन हैज सर्व देम फॉर रियली लॉन्ग ईयर्स एंड नाउ इट इज टाइम फॉर दैट मशीन टू रिटायर और उसकी जगह कोई नई मशीन आने वाली है तो दे एक्चुअली यू नो बाउ डाउन टू द मशीन्स एंड दे थैंक देम फॉर देयर सर्विस. यस दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी. इतना एक्नॉलेजमेंट तो भाई इंसान को नहीं मिल रहा है आजकल जितना ये चीज़ों को मशीनों को दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसने हमारी यू नो बहुत सारी चीज़ें फीजिबल कर दी है बहुत सारा काम जो है हमारा आसान कर दिया और उसके लिए उनकी जो सर्विस है उसके लिए हमें थैंक यू करना तो बनता है. दैट्स देयर आइडियोलॉजी एंड दैट्स ब्यूटिफुल. इसका हाफ भी अगर आज ही दुनिया में होने लगे ना तो दुनिया कुछ और होगी भाई साहब. बस सब इसी चक्कर में लगे हैं.

बहुत ही कमाल का गाना. एंड यू नो देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ट्रैक. एक तो बहुत इमोशनल हो जाता है और फिर एकदम से एनर्जेटिक हो जाता है, तो मुझे मजा आ जाता है ऐसे गाने सुन के. तनिषा के साथ हम रेडियो 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. और वक्त हो गया है मूवी टिकट्स देने का. यस, दृश्यम द कंक्लूजन जो कि इस वीकेंड पर रिलीज हो रही है और हम साथ में देखने वाले हैं 3 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे. उसके टिकट्स अगर आप जीतना चाहते हैं तो मेरा सवाल ध्यान से सुनिए. सो इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दृश्यम, राइट? फर्स्ट और सेकेंड आपने डेफिनेटली देखा ही होगा. तो सवाल मेरा दृश्यम मूवी से ही है कि जो सैम है, तब्बू के जो बेटे होते हैं जिनकी गाड़ी जो है अजय देवगन साहब छुपा देते हैं लेक में, वो गाड़ी का कलर कौन सा होता है? सैम की जो कार होती है उसका कलर क्या होता है? ये कलर जानना चाहती हूँ मैं. 3311063 पर मुझे मैसेज करके बताएं वॉट वॉज द कलर ऑफ सैम्स कार इन दृश्यम. 3311063 और यू कैन कॉल 4444104106 पर एंड यू कैन गेट अ चांस टू विन कपल मूवी टिकट्स फॉर दृश्यम द कंक्लूजन. तो अगर जीतना चाहते हैं तो फटाफट से आ जाओ. फिलहाल सेंडिंग शान की आवाज में छुप छुप के फ्रॉम द मूवी रश. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: यू, घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
4: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर।
3: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
4: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
1: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
5: इन एसोसिएशन विद
6: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

अरिजीत सिंह की आवाज में लूडो मूवी से आबाद बर्बाद। भाई इश्क का यही काम होता है, किस्मत हुई तो आबाद कर देगा, नहीं तो सब जानते हैं। तनिषा के साथ हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। और दृश्यम मूवी की टिकट्स देने का भारी भरकम काम जो मेरे पास था उसके लिए मैंने आपसे सवाल पूछा था और आपने भर भर के जवाब दे दिए, दिल खुश कर दिया मेरा एकदम से। ऐसे हैं, कितना कीनली देखते हैं ना मूवीज, छोटी छोटी डिटेल्स याद है हमें उसकी। सो द क्वेश्चन आई आस्क्ड वाज कि दृश्यम मूवी में जो सैम की कार होती है जिसे अजय देवगन लेक में डुबा देते हैं, उसका कलर क्या था? भाई कलर याद है सबको कार का, एक बंदा नहीं है जिसने गलत जवाब दिया हो। आई मीन एक आधा तो हो जाता है, बट दैट इज ओके, वी कैन लेट दैट गो। एंड सब ने करेक्ट आंसर दिया, यस उस कार का कलर येलो था। कुछ ने जो येलो कलर के प्रति अपना प्रेम है वो भी बड़े प्यार से यहाँ पे एक्सप्रेस किया है कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वो कलर, एंड दे वुड नेवर बाय दैट कलर कार, बट इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। सैम को येलो पसंद था, उसने ले ली। बाकी आई हैव गॉट मैसेजेस यो फ्रॉम मोहम्मद अरमान, देयर इज यूसुफ खान। यूसुफ खान साहब का जवाब गलत था जी, रेड कह रहे हो, नहीं रेड नहीं येलो था। मोहम्मद हसनैन इज देयर, प्राची का मैसेज है, मलिक वकास, राहुल गडकर, जरीन, मोहम्मद राज, यश, रमेश, प्रमोद, निताशा, अमरीन, सबके सही जवाब है येलो। अब मेरे लिए मुश्किल यहाँ हो गई है कि मैं इसमें से 2 लाख विनर कैसे निकालूं जो जीत रहे हैं कपल मूवी टिकट्स। तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि देखो 2 विनर्स आज निकलेंगे, बट पूरा दिन आपके पास मौका है टिकट्स जीतने का। कशिश भी लेकर आएगी, सिमरन भी लेकर आएगी, ऑल्सो हमारी सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कॉन्टेस्ट, तो वहां पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो राइट नाउ द 2 lucky winner who get the movie tickets, the couple movie tickets for Drishyam the conclusion, जो हम 3 तारीख को देखने जा रहे हैं दोपहर 2 बजे is Zareen ji, congratulations. And then we have, I'm trying to, you know, do a kind of a draw here. तो मैं कोशिश कर रही हूँ निकालने के नाम, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। And then we have Natasha, congratulations. Yes, Zareen and Natasha are the 2 winners for today. Rest, दिल छोटा नहीं करना मेरी जान, और भी टिकट्स है, एंड यू विल गेट अ लॉट मोर चांसेस टू ट्राई एंड विन दैट। बाय द वे ज़रीन जी एंड निताशा जी, निताशा राइट, निताशा तनीशा काफ़ी सेम सेम है ना, यार नाइस, आई लाइक दैट। सो बोथ ऑफ यू प्लीज शेयर योर QIDs विद मी एंड वी विल गिव यू अ कॉल व्हेन टू कम टू कलेक्ट योर टिकट्स एंड हैव एन अमेजिंग डे। स्टे ट्यून्ड एंड जी बिंदास।

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: ये गाना
2: कत्ल करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. Sounds unbelievable, but it's real.
1: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक.
0: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
1: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी.
0: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट.
2: Where the world comes to shore.
3: Third-party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. टीएनसी अप्लाई.
4: आने दो बहुत जगह है. आने दो केक्स. आने दो संडेज. आने दो बहुत जगह है.
5: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी. जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में. इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर. डोंट मिस आउट.

0: मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई

0: बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
1: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी, जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर, डोंट मिस आउट।
2: हाय, मैं हूँ सुहाली खान एंड यू आर लिस्निंग टू रेडियो ओलिव, जियो बिंदास।
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।
6: इन एसोसिएशन विद
5: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: अरे लड़ाई कैसी, दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार, सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट।
4: नहीं बेटे, के लिए जस्टिस चाहिए।
5: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
3: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
6: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
3: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
3: Overseas release by Zee Studios.
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
8: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
9: इन एसोसिएशन विद
8: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: ready for the festive exhibition by Boutique Edge, jahan duniya bhar ke renowned designers aur labels ek hi roof ke niche with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 a.m. to 8 p.m. Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion ka extraordinary edit.
1: आने दो बहुत जगह है आने दो केक्स आने दो संडेज आने दो बहुत जगह है
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
0: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

वायु की आवाज में बातें करो. ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और बात करने से ही बात बनती है यार. दिल में सब कुछ भर के बैठ जाएंगे ना तो दिल भी परेशान हो जाता है. सो ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे अपने आप से प्रॉमिस करो कि अपने दिल का और ज्यादा ख्याल रखोगे. छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेने का है, जाने दो, ठीक है. और जब लग रहा है कि दिल को परेशानी हो रही है, जिसे हम स्ट्रेस और एंजाइटी बोल के साइड कर देते हैं, उस पे फोकस करने का है, उसके लिए काम करना है. समझ रहे हो बात को? अपना ख्याल रखा करो, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो. और सुनते रहो रेडियो ऑल एफ, जियो बिंदास मेरी जान.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।

ऑफकोर्स जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी जो जॉब है, हम सबका जो काम है, वो भी बिल्कुल इस गाने की ही तरह है. कभी गम देता है, कभी खुशी देता है, कभी कभी हम जो है क्रिप करते रहते हैं कि यार ये काम हमें क्यों करना पड़ रहा है. लेकिन एक साल पहले याद करो, इसी काम के लिए जो है आप तड़प रहे थे. हाँ जी, पॉजिटिविटी का आज का डोज लेकर जो है मैं आ गई हूँ, आपकी कशिश हूँ मैं, और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखो यार, आज तो बहुत सारी बातें हमें करनी ही है. आपको जो है मूवी टिकट्स जीतने का मौका मैं देने वाली हूँ. कल जो है मैं दोहा ज्वेलरी एंड वॉच एग्जीबिशन गई थी, तो वहाँ की सारी बातचीत जो है वो हम करने वाले हैं. एंड साथ में आज जो है वर्ल्ड हार्ट डे है, तो आपके दिल की बात जो है अपने दिल से मैं करने वाली हूँ. सो इन सब चीज़ों के लिए आपको बस तैयार हो जाना है, सीट बेल्ट बांध के. फिलहाल जो है वॉल्यूम बढ़ाकर अमेजिंग वाले गाने जो है वो भी आपको इन्जॉय करने हैं. सो टॉक्सिक मूवी का मदहोश ट्रैक जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. सबसे पहले ये इन्जॉय करो, उसके बाद वापस आकर हम बात करेंगे इस मौसम के मामले के बारे में. स्टे ट्यून, मैं हूं आपकी कशिश, और कहते रहो मेरे साथ, जियो बिंदास.

0: Bangla's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:12 दैट इज 10:12 स्टेडियम जियो बिंदास

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस।

0: लिखने वाले ने क्या खूबसूरत लिखा है ना कि मैं चाहूं लेकिन फिर भी मिल नहीं पाऊं, तो ये जो है समय की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। वाओ गाइस, क्या लिखा है। कभी कभी राइटर्स के लिए जो है, लिरिसिस्ट के लिए जो है, मेरी रिस्पेक्ट जो है आसमान छू लेती है, लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि ऊपर का टेम्परेचर जो है वो कितना ज्यादा है, तो वो वापस आ जाती है। देखो यार, कितने अच्छे से इंटीग्रेशन करती हूँ ना मैं, कितने अच्छे से मौसम को हर चीज से रिलेट कर देती हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, मौसम के मामले को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ में देखो, अब मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ बचा है जो हम डिस्कस करें, इसीलिए जो है मौसम पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कतर में हर कोई यही कर रहा है। मैं जब भी जाती हूँ, जब भी किसी से मुझे स्मॉल टॉक करनी होती है, एक बार नाम पूछने के बाद, हाय हेलो होने के बाद, सबसे पहला टॉपिक जो है वो यही निकल के आता है, मौसम जो है वो बदल रहा है ना, हाँ काफी लोग बीमार भी हो रहे हैं, हाँ हाँ अक्टूबर तक जो है वो सर्दी आ जाएगी, ये बातें हो रही है। तो आज का टेम्परेचर इस वक्त का अगर मैं बात करूं दोहा का, वो हो रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। आज का भी हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, एंड लोएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो यानी मिला जुला मौसम होने वाला है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब मौसम से होप नहीं रखनी चाहिए, हो सकता है कि मौसम हमें अगले एक हफ्ते में सरप्राइज कर दे। सो फिलहाल कूलनेस के बारे में बात करते हुए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है उसे ही सुन लेते हैं, तो एटलीस्ट हमारे दिल को ठंडक मिल जाएगी, और बाकी दिल की बातचीत भी करेंगे लेकिन थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून, और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो विदास
1: रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

उनको विश करते हुए एक पोस्ट जो है वो रणबीर की जो है वो डाली आलिया भट्ट ने, एंड उसमें इतनी अडोरेबल और इतनी क्यूट फोटोज हैं कि आप क्या शर्माओगे, कोई भी शर्मा जाएगा देख के। लेकिन इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये सेलिब्रिटीज जिनको हम इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं, यार ये भी तो इंसान हैं, इनको भी तो मन करता है यार अपने पार्टनर की फोटो डालने का। एंड मुझे जो है आलिया भट्ट के लिए काफी बुरा फील होता है बिकॉज रणबीर कपूर का इंस्टाग्राम हैंडल ही नहीं है, वो इंस्टाग्राम चलाते ही नहीं है। एंड तो मतलब आलिया भट्ट की फोटोज डालने का, उन्हें मेंशन करने का, स्वीट स्वीट पोस्ट करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई सीन ही नहीं बनता। तो मुझे लगता है काफी बुरा, क्योंकि मुझे वो कपल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं जो बराबरी से एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करते हैं, क्रेडिट्स देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, लव यू बोलते हैं। सो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड सबके सामने आपके पार्टनर को जो है थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, सबसे डिफरेंट दिखाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। सो बाकी आप मुझे बताइए कि पार्टनर्स को सोशल मीडिया पे जो है अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाईलाइट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे जो है प्यार दिखाना क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बताइए मुझे। फिलहाल जो है एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा वाला गाना सिंगर्स किंग मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, गाने का नाम है तेरी। और बहुत ही प्यारी विजुअल्स इस गाने में है, कैटरीना बहुत अच्छी लग रही है, अक्षय कुमार बहुत अच्छे लग रहे हैं, एंड ऑल इन ऑल गाना बहुत बढ़िया है। तो वॉल्यूम बढ़ाकर जरा इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: ऑल दैट यू नीड।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

देखिए बेकरार दिल की तो मैं क्या बात करूं, कल मैंने आपको बताया था कि मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी दोहा ज्वेलरी एंड वॉच एग्जीबिशन में जाने के लिए। जी, और आपकी कशिश जो है लाइफ मस्त शो लेकर आ गई है यहाँ पर आपको ये बताने के लिए कि कल उसने क्या क्या किया। मैं ही हूँ आपकी कशिश और ये शो जो है लाइफ मस्त चल रहा है। एंड यार देखो, कल जो है मुझे काफी मजा आया। मैं यहाँ से शो करने के बाद मैं जो है DECC गई एंड वहां पर जाकर मैंने जब देखा, मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी एग्जीबिशन का। सो दोहा ज्वेलरी एंड वॉच एग्जीबिशन में सबसे पहले तो बहुत लग्जरी ब्रांड्स जो है वो देखने को मिले एंड बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग था सब कुछ। एंड इंडियन बॉलीवुड डिजाइनर मनीष मल्होत्रा जो है उन्होंने भी अपना जो कलेक्शन है वो शोकेस किया हुआ है एंड वहां पर मैंने उनके कलेक्शन में काफी सारी ऐसी चीजें देखी जो ऑलरेडी मैं यू नो सेलिब्रिटीज के फैशन यू नो पोस्ट में या फैशन शो में जो है ऑलरेडी देख रही थी। स्पेशली एक रिसेंटली एक ब्रेसलेट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो आलिया भट्ट ने रिसेंटली एक दिन पहले ही जो है एक फैशन शो में पहना था मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ, वो भी वहां पर था। सो इतनी क्लोजली इतनी अमेजिंग ज्वेलरी को जो है देखना बहुत ही बढ़िया था। मनीष मल्होत्रा खुद आए हुए थे, उनसे भी बातचीत की एंड ये जो सारी बातचीत है और जितनी सारी ग्लिम्स हैं इस इवेंट की वो आप देख सकते हैं रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर या सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर आप देख सकते हैं। तो जल्दी से जाकर वहां पर जाके सारी ग्लिम्स देख लो एंड जाकर फॉलो बटन दबा दो क्योंकि ऐसे बहुत सारी अमेजिंग चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। बाकी इस 3 अक्टूबर तक आप भी DECC जाकर जो है दोहा ज्वेलरी एंड वॉच एग्जीबिशन में जाकर अमेजिंग ज्वेलरी अमेजिंग वॉच जो है उसका कलेक्शन देख सकते हैं एंड विजिटर्स के लिए ये ओपन हो चुका है। सो डू विजिट क्योंकि अब जो है मुझे लोगों ने बताया है कि कदर में इवेंट्स होने जो है वो शुरू हो जाएंगे, सीजन जो है वो बढ़िया वाला आ जाएगा। सो फिलहाल जो है इसी बात को कंटिन्यू करते हुए जो है आप जल्दी से जाइए, सबसे पहले तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाके मेरी फोटो मेरी वीडियो जो है उसको जाके लाइक कर दीजिए, हमारे अकाउंट को जो है जाकर फॉलो कर लीजिए। बाकी मुलाकात होगी हमारी अब थोड़ी सी देर में इस गाने के उस पार। तो फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर ये ऑल फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द आर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:10, दैट इज 11:10। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
3: आने दो, बहुत जगह है, आने दो, केक्स, आने दो, संडेज, आने दो, बहुत जगह है।
4: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी, जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
5: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस

0: ये लड़का है दीवाना, गाना जो है आपने इंजॉय किया कुछ कुछ होता है मूवी से। एंड आप लोगों की ये जो तारीफें आप लोग मेरी करते हो, इसको सुन के भी कुछ कुछ होता है मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कुछ कुछ होता है। एंड आज वर्ल्ड हार्ट डे है, सो हम दिमाग को साइड में रखकर दिल की बात करेंगे, दिल से बात करेंगे। एंड मैं जो है वर्ल्ड हार्ट डे पर, हम हार्ट हेल्थ की तो देखो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक और बात है जो हमें करनी चाहिए, और वो बात है कि यार बॉलीवुड में इतनी इंपॉर्टेंस दिल को दी गई है, अगर इतनी ही हम हमारी असल लाइफ में दे देना तो फिर हमारी जो हार्ट हेल्थ है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। देखिए आप बॉलीवुड में दिल को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, हर दूसरे गाने में दिल होता है, हर मूवी दूसरी मूवी के टाइटल में दिल होता है, किसी भी रोमांटिक मूवी में जब प्यार का इजहार किया जाता है तो वो दिल से ही शुरू होता है। तो बस इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितनी इंपॉर्टेंस बॉलीवुड में दिल को दी गई है, बस उतनी ही हमें अपनी असल लाइफ में भी दिल को देनी चाहिए, ताकि हम अपनी हार्ट हेल्थ को जो है वो बेटर रख सकें। अब देखिए यार, हार्ट हेल्थ की बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो क्यों ना आज बॉलीवुड में भी जितनी दिल वाले गाने हैं उनको जो है सेलिब्रेट किया जाए। तो आप मुझे बॉलीवुड का आपका फेवरेट दिल वाला गाना जो है वो कौन सा है ये बताइए, और बाकी थोड़ी सी देर में जो है हम आकर डिस्कस करेंगे ये हार्ट जो है वो इतना छोटू सा जो हमारे डिवाइस है हमारी बॉडी के अंदर, ये इतना सारा काम कैसे कर लेता है, एंड कुछ अमेजिंग फैक्ट जानेंगे, एंड ऑफ कोर्स दिल वाले गाने जो है वो तो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरा फेवरेट दिल वाला गाना इज दिल धड़कने दो, फ्रॉम द मूवी दिल धड़कने दो। सो इस गाने को जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो, कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर है हमारा, और कहते रहो आपकी कशिश के साथ, स्टे ट्यून्ड, जियो पिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Rog. Suntem în number one radio station. Radio Olive. 106.3 FM.
1: Bindas. Ane do, bahut jagah hai. Ane do. Cakes. Ane do. Sundays. Ane do, bahut jagah hai.
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: अरे लड़ाई कैसी, दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा।

0: हो लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफ

मूवी से श्रेया घोषाल एंड सलमान भाई जो दिल में आते हैं लेकिन समझ में नहीं। देखिए यही तो हमारे दिल का कमाल है कि ये जो है दिल काफी चीजें हमें समझा देता है लेकिन दिमाग जो है वो हर चीज को कॉम्प्लिकेट कर देता है। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की जो है मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जो है ये शेयर किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी इम्पोर्टेंस बॉलीवुड में दिल को दी जाती है, अगर उतनी असल लाइफ में हम भी दिल को देने लग जाएं तो फिर हमारी हेल्थ जो है हार्ट की वो ना एकदम सॉर्ट हो जाएगी। हमें दिल की बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, दिल का ख्याल रखने में बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। सो आपसे मैंने पूछा था कि यार बॉलीवुड ने जो है दिल को इतनी इंपॉर्टेंस दिया तो आपको दिल वाला गाना जो है सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है बॉलीवुड का। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे दिल धड़कने दो बोला, उसके बाद बोला हम दिल दे चुके सनम एंड दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, राइट ऑफ कोर्स, ये सब बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाने हैं लेकिन दिल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं मुझे ऐसा लगता है जो आपको जाननी ज़रूरी है। सो इसीलिए मैं जो है कुछ फैक्ट्स लेकर आई हूँ। सो जो हमारा हार्ट है ना वो अपने आप पंप करता है एंड उसका एक अपना इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, यानी अगर वो बॉडी से बाहर भी आ जाएगा और अगर उसमें ऑक्सीजन फ्लो हो रही है तो वो काम करता रहेगा। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऑफिस के बाहर हूँ या ऑफिस के अंदर हूँ या मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, उसे ऑक्सीजन मिल रही है वो काम करेगा। उसके बाद आपका जो दिल है वो 1,00,000 बार धड़कता है एंड करीब जो है 2.5 बिलियन करोड़ मतलब बिलियन बार जो है वो आपकी लाइफ टाइम में धड़कता है। एंड हमारा जो दिल है वो हर मिनट में 5 लीटर खून जो है वो पंप करता है। बताइए यार कितना काम कर रहा है ये, और आप इतना काम करने वाले हार्ट के लिए जो है कुछ अच्छा काम ही नहीं कर रहे। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा हेल्दी खाना खाइए, अपने दिल को खुश रखिए और बाकी अमेजिंग वाले गाने आपके दिल को खुश करने के लिए तो मैं सुनाई रही हूँ। वॉल्यूम फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर एंजॉय कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: अनिदो केक्स अनिदो संडेज अनिदो बहुत जगह है
1: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट

अरिजीत सिंह एंड निकिता गांधी की आवाज में ये अमेजिंग वाला ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, लाइफ मस्त कब बनेगी? तब बनेगी जब आप अपने पार्टनर के साथ जो है मूवी देखने के लिए जाएंगे एंड आप कहेंगे यार कशिश अब इतना बता रही हो तो कोई मूवी रिकमेंड भी कर दो। यार पिछले दो दिनों से आपको एक बहुत ही अच्छी वाली मूवी जो रिलीज होने वाली है जल्दी, वो रिकमेंड तो कर रही हूँ ना मैं। दृश्यम कंक्लूजन जो है आप देखने के लिए अपने नजदीकी थिएटर्स में जा सकते हैं एंड फिल्म मास्टर की तरफ से जो है आपको टिकट जीतने का, एक कपल मूवी टिकट जीतने का मौका जो है वो मैं दे रही हूँ। आपको बस मेरे एक आसान से सवाल का जो है वो जवाब देना है। सो जल्दी से अपना फोन उठाओ, 3311063 इस नंबर पे मुझे आंसर भेज दो। और आज का सवाल बड़ा ही सिंपल सा है। आई नो आपने दृश्यम पार्ट वन और पार्ट टू तो देखी ही होगी, सो बस आपको मुझे ये बताना है कि दृश्यम में जो फीमेल कॉप है उस एक्ट्रेस का नाम क्या है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप मुझे भेज सकते हैं 3311063 पर। और हमारे जो लकी विनर्स होंगे उन्हें जो है हमारे तरफ से कॉल चला जाएगा। सबसे पहले तो मुझे आंसर जो है वो दे दो 3311063 पर और जीत जाओ दृश्यम कंक्लूजन की अमेजिंग वाली मूवी टिकट जीतने का मौका। फिलहाल जो है अमेजिंग वाला गाना तो आवारापन 2 मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो जरा इसे भी इंजॉय कर लो। वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज
1: टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय नानादल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवाकिफ अलखोर।
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है, इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:13, दैट इज 12:13। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
3: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 November तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट, और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ reasons to start the celebrations already. तो आज ही अपना price locked gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.
4: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
5: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
6: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
7: लुलु, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
1: Hello to all the listeners of Radio Olive 1.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।

0: ऑफकोर्स देखिए, जब अरिजीत सिंह जैसा अमेजिंग सिंगर जो है कोई बढ़िया सा गाना गाएगा तो सब में खामोशियां तो छा ही जाएंगी ना। क्या है, कभी कभी खामोशियों में भी अप्रिसिएशन छुपा हुआ होता है। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश, हूँ आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड देखिए यार, थोड़ी सी देर पहले जो है मैंने आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है एक इनिशिएटिव उठाया था, और फिल्म मास्टर जो है आपके लिए एक कॉन्टेस्ट लेकर आया, जहां पर आपको मौका हम दे रहे हैं दृश्यम 3 यानी दृश्यम कंक्लूजन के जो है कपल टिकट, जो है कपल मूवी टिकट जीतने का मौका। सो देखिए, मैंने ना बहुत ही आसान सा सवाल जो है वो पूछा था, क्योंकि ऑब्वियसली दृश्यम मूवी के हम कितने बड़े फैन है एंड सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। सो मैंने बस ये पूछा था कि यार दृश्यम मूवी में जो पावरफुल फीमेल कॉप है वो किस एक्ट्रेस ने प्ले किया है, एंड सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सही आंसर है तब्बू, एंड सच में तब्बू की एक्टिंग की तो हम सब फैन है, एंड दृश्यम में तो उनका एक अलग ही रूप हमें देखने को मिला है। सो ये जो है देखने के लिए दृश्यम का आगे का जो कंटिन्यूशन है वो देखने के लिए किसको हम जो है कपल मूवी टिकट दे रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सो गौतम जी जो है उन्होंने हमें बिल्कुल सही आंसर दिया है, वो हमारे फर्स्ट विनर बन गए, कंग्रेचुलेशन। एंड उसके बाद राखी जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया था एकदम सबसे पहले, तो राखी जी एंड गौतम जी कंग्रेचुलेशन, आप है हमारे विनर। हमारी टीम की तरफ से आपको एक ऑफिशियल कॉल जो है वो आ जाएगा। सो आप जो है स्टे ट्यून्ड रहिए, एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।

हाँ जी, देखिए ये बात तो आपको मान ही लेनी चाहिए क्योंकि आपको एंटरटेन करने के लिए मैं हर रोज आ जाती हूँ और इतनी मेहनत करती हूँ, तो आई एम द बेस्ट, तो मान ही सकते हो। बाकी देखिए ये मोटिवेशन का तरीका जो है आपको अपनाना चाहिए। सो जैसे हर रोज मैं आपको एक स्ट्रेस जो है कम करने का तरीका बताती हूँ, आज भी आ गई हूँ ऐसा ही एक तरीका लेके। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त मैं बना रही हूँ। एंड थोड़ी देर पहले हमने हमारे दृश्यम 3 के यू नो कॉन्टेस्ट विनर्स अनाउंस किए, गौतम जी एंड राखी जी, कंग्रेचुलेशन, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। एंड बाकी सब जो अभी सुन रहे हैं, जिन्होंने आंसर दिया, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि यार गाइज अभी आपको और मौके मिलेंगे, आपको बस ट्यून इन रहना है 106.3 रेडियो ऑलिव पर। अब देखो यार, मैं जो है ये बता रही थी आपको कि स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जा सकता है। तो देखो यार, हम ना लाइफ में कई बार ऐसी चीजें करते हैं जिसमें हमें मोटिवेशन की काफी जरूरत होती है, लेकिन कई बार हमें मोटिवेट करने वाले लोग हमारे पास नहीं होते। सो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने यू नो मोटिवेशनल इंसान खुद बनो, खुद को हर रोज मोटिवेट करिए, खुद की तारीफ करिए, कोई और करे या ना करे। सो बस इसी बात को कहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एकदम टशन में आपको टशन मूवी का गाना जो है वो मैं सुनाती हूँ, अमेजिंगली रोमांटिक ट्रैक फलक तक, इसे एंजॉय कीजिए एंड हमारे साथ फलक तक चलते रहिए। बाकी आपको एंटरटेन करने का वादा जो है वो हम निभाते रहेंगे। स्टे ट्यून और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.

0: जी लाल सिंह चंडा मूवी से ये ट्रैक आपने इंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल ऑफ एयर। लेकिन देखिए इतनी सारी बातचीत के बाद जब टाटा बाय बाय कहना होता है तो थोड़ा सा बुरा सा तो देखो लगता है। हाँ जी मैं हूँ आपकी कशिश और मेरे साथ आप इंजॉय कर रहे थे शो लाइफ मस्त है। लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। लेकिन जाते जाते हर रोज जो कहती हूँ वो तो मैं कहूंगी, लेकिन आज एक स्पेशल चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं दिल को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी ना शुरू कर दो, ये सही वक्त है। अगर आपने अभी अपने दिल का ख्याल रख लिया तो फिर आप जो है उम्र दर उम्र जो है ये दिल आपका ख्याल रखेगा। एंड आई कैन यू नॉट, ये जो दिल है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, खाने पीने में जो है वो सब कुछ हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, थोड़ा वर्कआउट कर लो। एंड माई फ्रेंड ये सिर्फ मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं खुद को भी कह रही हूँ, क्योंकि कई बार रियलाइजेशन तब होता है जब आप किसी और को समझा रहे होते हो। सो बस मैं और आप आज जो है साथ में ये कोशिश करते हैं कि अपनी हार्ट हेल्थ के लिए जो है थोड़ा अच्छा करेंगे। बाकी खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए एंड गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए। मौसम जो है बदल रहा है तो अपनी हेल्थ का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। एक हफ्ते पहले जो है मुझे सर्दी हुई थी, अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। सो मैं जो है जिस चीज़ को भुगत रही हूँ मैं नहीं चाहती कि आप भी उससे गो थ्रू करो। सो अपनी हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखो, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि धीरे धीरे जो है सूरज चाचू की जो चमक है वो कम हो रही है, सर्दी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन का भी ध्यान रखिए, पानी पीजिए। एंड बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जाकर फॉलो कर लीजिए, वहाँ फॉलो बटन दबाइए। अमेजिंग कॉन्टेंट हम वहाँ पोस्ट कर रहे हैं, सो उसे भी जाकर लाइक करिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे याद करते रहिए। 3311063 हमारा नंबर है, इस बार आपको जब भी जो भी मदद चाहिए हो, कुछ भी शेयर करना हो, आप हमें शेयर कर सकते हैं। फिलहाल ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय कीजिए एंड मुझे मिस करते रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour ye yeah, guys।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड भी।
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट।
3: लुलू, where the world comes to shore.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। आने दो बहुत जगह है आने दो केक्स आने दो संडेज आने दो बहुत जगह है।
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो

0: अरे लड़ाई कैसी, दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा, सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8th November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold Golden Diamonds.
4: Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
1: आने दो, बहुत जगह है, आने दो, केक्स, आने दो, संडेज, आने दो, बहुत जगह है।
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी, जब डेरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेरी क्वीन पर, डोंट मिस आउट।
0: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
1: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
2: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
1: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
1: Overseas release by Zee Studios.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

वेलकम, गुड आफ्टरनून. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है ऑल ऑफ रिचार्ज. आज का दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है और मुझे लगता है कि हम इंडियंस ना दिल के साथ थोड़ा सा ज्यादा ही इमोशनल रिलेशनशिप रखते हैं. दिल टूट गया, दिल पे मत लेना, दिल नहीं मान रहा और दिल लगा लिया है. हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में दिल इन्वॉल्व है, लेकिन एक्चुअल हार्ट की हेल्थ के बारे में हम तब सोचते हैं जब बॉडी रिमाइंडर भेजना शुरू कर देती है. वर्ल्ड हार्ट डे का पर्पस भी इसी अवेयरनेस को लेकर है. कार्डियोवैस्कुलर डिसीज दुनिया भर में इतनी ज्यादा लीडिंग कॉजेज लेकर आ रही है. भाई इस साल का मैसेज भी यही है कि डोंट मिस अ बीट, ये थीम है आज का. सो आज एक इंटरेस्टिंग थॉट में लेकर आई हूं कि हम अपने फोन को 20% बैटरी पर देख के ना चार्जर ढूंढने लग जाते हैं. हमें लगता है कि यार बैटरी कभी भी डाई हो सकती है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है. सो बॉडी की वार्निंग सिग्नल्स को कितनी बार इग्नोर कर देते हैं. सो आपके लिए हार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इमोशंस वाला, ये एक्चुअल वाला, कौन सा वाला दिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फटाफट से बताइए 3311063 पर. एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स ऑलिव रिचार्ज. सो आपके फ्रिज में ना एक ऐसी चीज जरूर होगी जिसे देखकर आप हर दो दिन में कहते होगे कि इसको कल यूज कर लेंगे, और वो कल कब आता है पता ही नहीं. सो आज है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट. सो बेसिकली हम अगर मैं बात करूं, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फूड वेस्ट हमेशा ना ग्रीड की वजह से नहीं होता. कभी हम मूड के हिसाब से ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, मंडे को हेल्दी सैलड का मन करता है, वेंसडे को पिज्जा खाने का, सैटरडे को कुछ बनाने का मूड नहीं होता, और बेचारा जो ये जो सैलेड और ये सब चीजें हैं फ्रिज में रखी रह जाती है, रिटायरमेंट ले लेती है. सो आई विल से कि हम इंडियंस की नई आदत होती है कि हर जो चीज बचती है ना थोड़ी बहुत हम फ्रिज में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं यार इसे खराब तो कर नहीं सकते. सो आज का दिन आपको यही सिखाता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट कि भाई कितना जरूरी है कि जो आपने छोड़ा थोड़ा थोड़ा करके बचाया हुआ है उसको आपको वेस्ट नहीं करना है, और बैक्टीरिया जो है वो उन तक नहीं पहुंचने देना है. सो आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आपके घर में सबसे ज्यादा क्या वेस्ट होता है, वेजिटेबल्स, ब्रेड्स, फ्रूट्स या फिर लेफ्ट ओवर्स? बताइए मुझे 3311063 पर. बस मैं कोशिश करती हूँ कि इनमें से कुछ भी खराब ना हो, ट्रस्ट मी. सो यू टेल मी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज. आज बर्थडे है वामिका गब्बी का एंड आई थिंक उनके करियर को देखने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है. कुछ एक्टर्स ना स्क्रीन पर आते हैं और आपको एक्टिंग दिखाते हैं और कुछ एक्टर्स आते हैं और आपको कैरेक्टर दिखाते हैं. वामिका ने हिंदी के साथ पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सिनेमा में भी बहुत काम किया है. मतलब एक लैंग्वेज या एक इंडस्ट्री के बॉक्स में खुद को लॉक नहीं किया. और मुझे पर्सनली ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, जो लोग ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं ना, उनका दिमाग भी ज़्यादा चलता है. सो आज के टाइम में जब एक्टर का इंस्टाग्राम पर्सनैलिटी भी उसकी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया है, तब भी कुछ परफॉर्मर ऐसे हैं जो स्क्रीन पर अपनी पर्सनैलिटी से ज़्यादा अपने कैरेक्टर्स याद छोड़ कर जाते हैं. सो यू टेल मी कि आपके फेवरेट एक्टर का नाम क्या है जिसे देख कर आपको यू नो एक्टर नहीं सिर्फ कैरेक्टर याद रहता है, आपको लगता है यार ये तो बेस्ट हो गया. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम ऑलिव रिचार्ज. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Story of the day. Story of the day.
1: हमारा दिल दिमाग से एकदम अलग है। दिमाग सोचता समझता है, पर दिल छोटी छोटी बातों से खुश भी होता है और बिखर भी जाता है। इसीलिए तो इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर एक एवरेज अडल्ट हार्ट हर मिनट 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है। इस दिल की इमोशनल वेलबींग और फिजिकल हेल्थ दोनों साथ साथ चलती है। तो जब आप अंदर से खुश रहते हैं तो हार्ट ऑटोमेटिकली सेफ फील करता है। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे जो काम दिल को

0: रेट, और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट. है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी. तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
1: लगा और हो जा रिचार्ज.
2: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: ऑलिव रिचार्ज.
3: This hour is brought to you by
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ.

यार बर्थडे की बात चली रही थी तो मेरे पास अभी मैसेज आया कि आज बर्थडे है वन ऑफ बास्केटबॉल्स बिगेस्ट नेम केविन डुरेंट का, और उनके बर्थडे पर मुझे बास्केटबॉल से ज्यादा ना एक सिंपल क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, विच इज टैलेंट की एक्सपायरी डेट होती है क्या? बिकॉज किसी भी फील्ड में हम यूजुअली यंग टैलेंट को सेलिब्रेट करते हैं, नए फेसेस, नेक्स्ट बिग थिंग, फ्यूचर सुपरस्टार, लेकिन करियर का डिफिकल्ट पार्ट होता है स्टे रेलेवेंट। एक साल अच्छा परफॉर्म करना टैलेंट है, 10-15 साल तक टॉप लेवल पर कंप्लीट करना और करते रहना, उसके पीछे टैलेंट के साथ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही होता, रेडियो हो, बिजनेस हो, एक्टिंग हो, टीचिंग हो, स्टार और यू नो स्टार्ट करना, अगर मैं बात करूं कि लोग स्टार्ट करना बहुत एक्साइटिंग समझते हैं लेकिन सस्टेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो आपके हिसाब से किसी भी करियर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टैलेंट या कंसिस्टेंसी? फॉर मी, मुझे लगता है कि टैलेंट तो इंपॉर्टेंट है, आप एंट्री कर लेते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी वो नहीं बन पाती यार। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

बर्थडेज की बात चली रही थी तो फिर मुझे याद आया कि आज तो सिंगर और सॉन्ग राइटर हेल्से का भी बर्थडे है, और उनकी स्टोरी का एक पार्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको बताती हूँ, क्योंकि उनका अर्ली म्यूजिक जर्नी जो है वो इंटरनेट प्लेटफॉर्म जैसे साउंड क्लाउड और टम्बलर से कनेक्टेड थी। अब बताती हूँ कैसे। आज हम बोलते हैं कि सोशल मीडिया हैज चेंज एवरीथिंग, राइट, लेकिन इमेजिन कीजिए एक टाइम था जब एक आर्टिस्ट को डिस्कवर होने के लिए टेलीविजन, रेडियो, रिकॉर्ड लेबल, इन सब गेट्स को क्रॉस करना पड़ता था। तब इंटरनेट केम एंड सडनली आपके लैपटॉप में, आपके घरों तक, मतलब इतनी सारी चीज़ें आ गई और ऑडियंस हर जगह आ गई। तो आज तो सिचुएशन और क्रेजी है, आपके पास टैलेंट है, कैमरा है, फोन है और एल्गोरिदम से दोस्ती हो गई है, तो दुनिया तक पहुंच सकते हो आप। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑल ऑफ रिचार्ज। बट आई हैव स्टिल वन क्वेश्चन कि अगर आपको आज बिना किसी ऑडिशन, इंटरव्यू या रिकमेंडेशन के अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना हो तो आप क्या शो करना चाहोगे? कोई डांस, कोई म्यूजिक, या फिर आपको कोई स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है? बताइए मुझे 3311106 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
1: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
0: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
0: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक
0: सिलेक्टेड रेडीमेड गारमेंट्स साड़ीज चूड़ीदार फुटवेयर लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी
0: हाफ पे बैक शॉप मोर गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट
3: लुलू वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप
4: हाय रेडियो ऑलिव 106.3 लिसनर्स दिस इज शाहरुख खान
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क
6: Olive Recharge
7: Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas Olive
8: Recharge This hour is brought to you by
9: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance dekar apna gold price lock kare visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom

0: एक फिल्म की स्टोरी बताती हूँ जो फिल्म से ज्यादा हॉलीवुड सर्वाइवल स्टोरी लगेगी आपको। यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू। और शो का नाम, यस ऑफ कोर्स, ऑलिव रिचार्ज। नाम है कयोटी वर्सेस एक्मी। सो बेसिकली आपको वो कयोटी तो याद ही होगी, वही पुअर फेलो जो हर बार रोड रनर को पकड़ने के लिए एक्मे से कुछ क्रेजी गैजेट्स ऑर्डर करता था और गैजेट उसी पर उल्टा पड़ जाता था। सो बेसिकली न्यू फिल्म में कयोटी डिसाइड करती है, करता है एक्चुअली, कि बस एक एक्मे को कोर्ट में लेकर जाना है। और वहां पर क्या होता है, असली स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। फिल्म जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, फिर जो वॉर्नर ब्रदर्स हैं उन्होंने इसे शेल्व किया और बाद में इसे रिवाइव किया। सो बेसिकली अब ये रिलीज तो हो गई है और आज सितंबर 29 है। फिल्म आप देख सकते हो, मतलब कयोटी ने रोड रनर को नहीं पकड़ा बट फाइनली अपनी मूवी के रिलीज डेट तक जरूर पहुंचा दिया। सो बचपन की किसी कार्टून कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, वर्जन जो अडल्ट वर्जन होता है उसको अगर आप देखना चाहो तो आप कौन सी मूवी देखना चाहोगे? बाय द वे अगर आपको ये मूवी पसंद है तो यू कैन वॉच और बताना मुझे कि आपने इसका पहले वाले जो पार्ट्स है वो देखे हैं कि नहीं। यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: अरे लड़ाई कैसी, दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
4: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
5: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यू नो सेलिब्रिटीज को लेकर, हम उनकी फिल्म देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, इंटरव्यूज भी देखते हैं, और आजकल तो पॉडकास्ट इतने आ गए हैं तो वो देखते ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी चैट शो या क्विज शो पर आकर बोलते हैं, स्कूल में मैं ऐसा था, ऐसी थी, मेरी फर्स्ट सैलरी इतनी थी, फर्स्ट ऑडिशन में ये हुआ, हम सडनली और इंटरेस्टेड हो जाते हैं। रिसेंटली राजकुमार राव और वामिका गब्बी जैसे स्टार्स जो हैं वो केबीसी के लेटेस्ट सीजन में नजर आए, और कॉन्वर्सेशन में उनकी पर्सनल जर्नी जो थी वो वहां पर बात हो रही थी, क्योंकि सेलिब्रिटी देखते देखते हम ना उनमें ह्यूमन बीइंग डिस्कवर करना चाहते हैं, हमें लगता है कि यार इनकी कैसी जर्नी रही होगी, इन्होंने कैसे लाइफ में स्ट्रगल किया, यहां तक कैसे पहुंचे, स्क्रीन पर तो ये सुपरस्टार हैं और स्क्रीन के बाहर ये कैसे हैं, ओह ये भी हमारी तरह नर्वस होते हैं क्या, मतलब ये सब हम जानना चाहते हैं। सो आपको किसी सेलिब्रिटी की कौन सी रियल लाइफ स्टोरी सुन के लगता है कि ओह आई डिडंट नो दिस, बताइए मुझे 1063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लड़ाई कैसी?
1: दोनों खाओ।
2: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
3: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
4: लगा और हो जा रिचार्ज।
5: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
6: This hour is brought to you by
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

इतनी फेक रिपोर्ट्स आ रही थी सोशल मीडिया पर, सर्कुलेट हुई और लोगों ने उन्हें यू नो ऐसा समझ लिया कि ही इज नो मोर, ठीक है, व्हाइल द क्लेम इटसेल्फ वाज फॉल्स. और ये सिर्फ जैकी चैन के साथ नहीं होता, किसी सेलिब्रिटी की फेक न्यूज आती है, किसी एक्टर का फेक स्टेटमेंट आता है, किसी ब्रांड का फेक अनाउंसमेंट होता है और हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर वेरीफाई भी नहीं करते और कभी कभी तो वेरीफाई होता भी नहीं है हमसे, क्योंकि शॉकिंग न्यूज हमेशा ना ब्रेन को नॉर्मल न्यूज से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑल ओवर रिचार्ज. तो कभी भी आपके पास ऐसी कोई न्यूज आती है ना जो फेक लगती है या आपको लगता है कि यार आई डोंट नो, मतलब इसके बारे में अभी तक किसी से बात नहीं हुई, तो सबसे पहले उसे ना वेरीफाई कीजिए. सो एक सिंपल इंटरनेट रूल है जो याद रखना है आपको, पहले चेक करना है फिर शेयर करना है. और मुझे बताइए कि आपको लास्ट टाइम कौन सी फेक न्यूज मिली थी जो पहले बिल्कुल रियल लगी थी आपको. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान, शो का नाम है ऑल ओवर रिचार्ज. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: आने दो आने दो, बहुत जगह है, आने दो आने दो। केक्स आने दो आने दो, संडेज आने दो आने दो, बहुत जगह है।
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
3: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी अ रिक्वायरमेंट बट विद बीमा यू गेट सो मच मोर। गेट 24/7 रोड साइड असिस्टेंस विद टोइंग, रिकवरी, टायर चेंज, फ्यूल डिलीवरी, बैटरी बूस्ट एंड लॉकआउट सपोर्ट। स्प्लिट योर पेमेंट इनटू 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड स्टे क्लेम फ्री to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
4: घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
5: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
4: क्या? कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 777-000-525 पर।
5: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
6: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
7: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
2: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं, आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग।
8: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
9: Hi, मैं हूँ सारिका।
10: सारिका,
9: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
10: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
11: रेडियो ओलिव, हमें नंबर वन। दिल लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
12: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: So, आज एक किताब की बात करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बोलना है कि मेरे पास बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। मे बी आपके पास 500 पेज की कोई किताब पढ़ना या उसके लिए टाइम ना हो। आज रिलीज हो रही है एक बुक है जिसका नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ द इंटरनेशनल शॉर्ट स्टोरी, एडिटेड बाय जॉन, ठीक है। एंड एक कलेक्शन जो डिफरेंट कंट्रीज लैंग्वेजेस और अगर मैं बात करूं कि ट्रेडिशंस की शॉर्ट फिक्शन के साथ आ रही है। एंड आई लव द आइडिया ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, क्योंकि यार आपको ना एक स्टोरी खत्म करके ऐसा लगता है कि अब आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो, क्योंकि समटाइम्स 10 पेज आपको वो फीलिंग दे देते हैं जो 500 पेजेस नहीं दे सकते। एग्जैक्टली लाइक अ गुड रेडियो लिंक, राइट। सो आई विल से कि कम टाइम बट कुछ देर तक दिमाग में रह जाए, ऐसा अगर कुछ पढ़ने के लिए मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपको शॉर्ट स्टोरीज पसंद है या प्रॉपर लॉन्ग नॉवेल्स जिसमें कैरेक्टर्स के साथ महीनों तक रिलेशनशिप चलता रहता है और आप सोचते रहते हो कि आगे क्या होगा। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। नंबर इज सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो दिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
2: लुलु फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलु हाइपरमार्केट।
3: लुलु, where the world comes to shop.
4: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555. Or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
5: Tough kaam aur bhi aasan. Carmel Group laya hai Shantui ke wheel loaders, excavators aur bulldozers. Mazbooti aisi jo har challenge jeet le. Visit Carmel Group now.
6: Aane do, bahut jagah hai. Aane do, cakes. Aane do, Sundays. Aane do, bahut jagah hai.
7: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
8: देर लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
9: This hour is brought to you by
10: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

सो क्रिकेट की जब भी बात होती है हम यूजुअली बैट बॉल विकेट और रन्स की बात करते हैं, लेकिन एशियन गेम्स में रिमाइंडर मिल गया है कि कभी कभी मैचेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वेदर भी हो सकता है। रेन ने मेंस क्रिकेट कंपटीशन को बहुत इफेक्ट किया है और इंडिया का क्वालिफायर वॉश आउट के बाद इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब इंडिया का सेमीफाइनल श्रीलंका के अगेंस्ट होने वाला है 1st October को, जो कि ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है। और मुझे ये सोच के बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि स्पोर्ट्स में हमें परफॉर्मेंस के साथ अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है और वो सिखाता है हमें स्पोर्ट। सो आप 100% प्रिपेयर्ड हो सकते हो, लेकिन वेदर, इंजरी, एक कोई बड़ा बुरा सा कोई डिसीजन, वन लकी एज, ये सब यू नो साथ में चलते हैं। सो गेम सडनली चेंज हो जाता है। लाइफ भी थोड़ी सी ऐसी है, इजंट इट? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। सो यू टेल मी, आपको क्रिकेट में लक इंपॉर्टेंट लगता है या फिर प्योर परफॉर्मेंस? 3311 1063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Olive Bay. Story of the day. Story of the day.
1: हमारा दिल दिमाग से एकदम अलग है। दिमाग सोचता समझता है, पर दिल छोटी छोटी बातों से खुश भी होता है और बिखर भी जाता है। इसीलिए तो इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर एक एवरेज अडल्ट हार्ट हर मिनट 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है। इस दिल की इमोशनल वेलबींग और फिजिकल हेल्थ दोनों साथ साथ चलती है। तो जब आप अंदर से खुश रहते हैं तो हार्ट ऑटोमेटिकली सेफ फील करता है। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे जो काम दिल को खुशी देता है उसे थोड़ा सा वक्त दो और दिल धड़कने दो।

0: अरे लड़ाई कैसी, दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा, सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट।
4: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
5: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
3: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
6: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
3: The end we've been waiting for. दृश्यम दी कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
3: Overseas release by Zee Studios.
2: Doha, get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही roof के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 a.m. to 8 p.m. Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit.
7: Khol le laga aur ho ja recharge.
1: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
7: Olive Recharge.
8: This hour is brought to you by
9: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance lekar apna gold price lock karein. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

Now let's do one confession. आपको अपनी लाइफ का सबसे embarrassing moment याद है? Obviously है. और problem ये है कि आपके brain उसे delete करने को ready भी नहीं है. School में कुछ stupid बोल दिया था, याद है. College में किसी wrong person को message कर दिया, याद है. Office में presentation के बीच में pronunciation गलत हो गया, 2026 में भी याद है. Yes. Meanwhile जो genuinely अच्छा काम हमने किया, उसका detail कहाँ है? हाँ, कुछ तो किया था ना. Psychology में embarrassing moments को हम बार-बार mentally replay कर सकते हैं, क्योंकि emotionally charged event attention और memory को strongly affect करते हैं. So maybe next time आपका brain जो है वो 2014 का embarrassing moment replay करे. बस उसको बोलो भाई वो अब केस क्लोज हो गया है, एंड टेल मी ऑनेस्टली आपका वो कौन सा एम्बैरेसिंग मोमेंट है जिससे ना आपका ब्रेन डिलीट करने से क्लियरली मना कर चुका है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. फॉर नाउ आई हैव टू से मुझे जाना होगा, लेकिन अपने सुपर हिट गाने और सुपर हिट शो के साथ आप इंजॉय करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑल पर. तब तक के लिए मैं बोलना चाहूंगी आपको बाय. कल मिलेंगे दोपहर में विद रेडियो ऑल और ऑल रिचार्ज लेकर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

जो प्यार नहीं करता थे, मैं तो कर दिया यार। कैसा रहा आपका आज का दिन? कहीं ऐसे गाने जैसा तो नहीं रहा? बैठने जा रहे होते हैं तो ऐसे ही पूरा दिन जो है वो आपका ऐसे निकल जाता है कि दिल पे जख्म आते हैं, जहां से गुजरते हैं। लेकिन मेरा दिन जो था वो अच्छा रहा हमेशा की तरह, मैं खुश रहती हूँ यार। नौ बजे तक तो बिल्कुल नहीं जुदा होने वाले, क्योंकि 4 घंटे अब नहीं है बेबी। आपके दिन के बारे में बताने के लिए और आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजने के लिए मेरा नंबर आपको बताया 3311063, फटाफट से भेज दीजिए, इंतजार कर रही हो।

0: अरे लड़ाई कैसी, दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार, सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा, सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
4: यू, घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
5: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर।
4: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7700525 पर।
5: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ। और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
6: मैं हूं अली कपूर, रेडियो ऑलिव, यू आर विद अस।
7: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
8: Radio Olive, I'm the number one.
9: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
10: आरजे सिमरन के साथ।
11: जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
12: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
13: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: भाई साहब इस गाने के लिरिक्स जो है ना बवाल है, कहते कि एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का, और जब वो अजनबी बन के पास से गुजरते हैं, क्योंकि भाई जब गैर बंदा होता है वो भी हेलो कर देता है, अब जो कोई गैर बन के गुजर रहा है कुछ ना कुछ तो बात होगी। हेडफोन लगा के फुल वॉल्यूम पे सुनने का मजा आता है, यही मैं कर रही थी। मैं क्या जी सुनियो की दादी की हाल चाल सच रिया गाल सिमरन कौर तो डेनाल, और बताओ कैसी जा रही है आपकी शाम। बात तो बिल्कुल सही है,
1: तू भी
0: बात हो रही है तो शाम को चेक कर लेते थोड़ा कैसा है मूड उसका।
1: मौसम आपके सुनो, मौसम आपके सिमरन के साथ सुनो।
0: सुना देते हैं, आपने हुक्म किया और हमने हम मतलब मान लिया। मेरी उर्दू जब मैं बोले फ्लो फ्लो में जाती हूँ मेरी गलत हो जाती है, पर आप लोग समझो मौसम जो है वो सही जगह पे जा रहा है। 36 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है 12 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। ह्यूमिडिटी 53% है और आज का मिनिमम टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। आपके दिमाग का टेम्परेचर कितना है वो बता दो। 3311063 पर सिमरन कौर आपके साथ जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: वाइब सेट हो रखी है यार। सिमरन कौर है तोड़े नाल और क्या है
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है। आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने आपको कितनी बार बताया कि सुबह जब मेरी आंख खुलती है फोन उठाती हूँ और मैं म्यूजिक ऑन जो है वो करती हूँ, लेकिन आज जब मैंने फोन उठाया ना तो सोशल मीडिया समहाउ इंस्टाग्राम जो था वो खुल गया और मेरे सामने आज मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देखा, मैंने बादशाह का मुंह देखा। अब कैसे, बादशाह की एक स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो कि इन्होंने बाद में डिलीट कर दी। आपको पता है अगर आप बिग बॉस फॉलो करते हैं, मैं करती हूँ आजकल, डोंट जज मी, इट्स ओके अगर आप कर रहे भी है तो, है ना। सो उसमें उनकी एक्स जो है ईशा रिकी वो थी और वो इविक्ट हो गई। ओके, सो बादशाह ने हंसते हुए एक स्टोरी डाली हुई थी जो कि उन्होंने बाद में डिलीट कर दी, बट मीडिया वाले तो मीडिया वाले हैं, उन्होंने वो स्टोरी डाउनलोड करके आज हर जगह पे वो स्टोरी वायरल हो रही है कि वो हंस रहे हैं यार ईशा रिकी के इविक्शन।

0: अनिदो केक्स अनिदो संडेज अनिदो बहुत जगह है
1: फ्रिज में और पेट में। बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
2: Festivities की planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and diamonds.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: लव का चक्कर बाबू भैया। दिल तोड़ देते और दिल टूटने का डर जो है वो हर किसी को लगा रहता है। वर्ल्ड हार्ट डे है आज। मुझे आज के दिन ना रॉकस्टार फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है।
1: मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए कटोना भाई, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। हम प्लीज कटोना भाई,
0: दिल टूटने से हर कोई जो है वो डरता है, लेकिन ये जो दिल है ना, दिल एक्चुअली जब आपका टूटता है ना, वाकई में ऐसा फील होता है कि आपको जो है वो हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि आपकी चेस्ट में पेन होता है, आपको सांस लेने में जो है वो दिक्कत आती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो शॉक में चली जाती है, है ना। सो दिल टूटने पे जो है वो ये जो दर्द होता है वो जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक हो, बट यस चेस्ट पेन को कभी भी जो है वो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट ये थोड़े टाइम के लिए होता है, ये रिकवर हो जाता है, क्योंकि कोई अगर आपको जिंदगी में छोड़ के चला गया या प्यार में आपका दिल टूट गया, सो ये सारी चीजें जो है वो आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा असर करती हैं। तो हार्ट को किस तरह से आप हेल्दी रख सकते हैं, ऑफकोर्स जिस तरह से कहते हैं ना कि डांस करना, एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, जब हम ये चीजें करते हैं तो हार्ट को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हार्ट को भी वर्कआउट चाहिए भाई, 24/7 जो है वो काम करता है। हम बोलते हैं अरे हमने तो आज 10 घंटे 12 घंटे काम कर लिया बेटा, अगर हार्ट ने ब्रेक ले ली ना लग जानी है यार आपकी। सो या हार्ट को हेल्दी रखिए, स्ट्रेस मत दीजिए, कोई नहीं छोड़ के जा रहा, हार्ट ब्रेक कर रहा, प्यार दिल तोड़ रहा, उसको बोल भाई तू जा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, अपना दिल जो है वो आपको नहीं टूटवाना चाहिए, टूट भी जाए तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो खराब होगी, आपकी खुद की हेल्थ जो है वो खराब होगी। सो सिर्फ ऑयली फूड से आपका हार्ट इफेक्ट नहीं होता है, कॉन्स्टेंट जो स्ट्रेस होता है ना वो भी आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। थोड़ा सिमरन कौर की तरह चिल करो, थोड़ा रिलैक्स करो और गाने सुन लिया करो यार जब दिल टूटे। बेवकूफिया करते हैं, फिर खुद पे हंसी भी आती है, अरे यार मैंने क्या क्या हरकतें कर ली है यार लाइफ में इस दिल के लिए, करवाते हैं बीवी, दिमाग जो है ना सही है यार, सख्त लौंडा है वो, उसकी बात माना करो।
2: अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम, नाम
3: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: पगला दूंगा पूरे देश को.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.
2: आने दो बहुत जगह है. आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है.
3: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी. जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर. डोंट मिस आउट.
4: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.

गाना सुनते सुनते तैयार हो जो, मूवी टिकट जीतने का मौका मिलने वाला है। अरे दृश्यम 3 दिखाएंगे फ्री में दोस्तों, तैयार हो जाओ इस गाने को सुनते सुनते। True, I'll go.

0: बस सर ठीक है। स्टूडियो की घड़ी में
1: अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुखवा के अलखोर।
0: मैंने उससे पूछा क्या चाहिए,
2: तू चाहिए हर मर्तबा तू चाहिए।
0: वो तो ठीक है, पर मेरी ऊपर वाले से बात चल रही थी, अपने गुनाहों की बात कर रहे हैं यार।
3: दिवरी दिवरी दिवरी।
2: बोला कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं, बोला तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं।
0: ऊपर वाला भी हंसता होगा जब इस तरह की बातें जो है वो उनसे करते हैं। बट यार इतना पता है यार, किसी का गलत नहीं किया यार लाइफ में, आप भी मत करिएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में ये सोचते रहते हैं यार मैंने किसी का लाइफ में गलत नहीं किया तो मेरे साथ क्या, मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि हमको लेसन मिलते हैं कि हमको ये चीज लाइफ में दोहरानी नहीं है। अभी फिलहाल दोहराई जाएगी ये कहानी एक बार फिर से। जी हाँ, दृश्यम 3 जो है वो रिलीज हो चुकी, मतलब होने वाली है, और ये फिल्म हम आपको 3rd of October को दिखाने वाले हैं। राइट, सो इस 3rd October को दोपहर को 2 बजे आप क्या कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं तो फटाफट से फ्री कपल मूवी टिकट जीतने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ये फ्री में देने वाले हैं। फिल्म मास्टर UAE आपके लिए लेकर आए हैं ये टिकट। सो या अगर आपको चाहिए तो वही है अपना कि 15 से 30 सेकंड के अंदर सिमरन कौर को आप बताओ कि आप ये कपल मूवी टिकट क्यों डिजर्व करते हो। देखो लंबी कहानियां नहीं चाहिए, 15 से 30 सेकंड उसके ऊपर नहीं चाहिए, और थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ यार। मैं और मेरी पत्नी कब से फिल्म देखने नहीं गए हैं, मेरे को अपने पति को सरप्राइज करना है, ये मत करो यार। कोई अच्छा रीजन दो कि आप ये क्यों डिजर्व करते हो। 3311063 पर एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ। हे सिमरन, अपना नाम बताइए और बताइए। खोसला रघु मिले जो सुकून, आपको पता है कि मेरे को, मैं बहुत तगड़ा ऑब्सेशन हो गया मुझे इनके गाने का। सो बहुत जल्दी इनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं, जूम इन इंटरव्यू। सो बहुत सारे सवाल पूछने हैं यार इनसे, इतना दर्द, इतने इमोशंस, कैसे वो ये गानों में लेके आ रहे हैं यार। मिले जो सुकून बहुत ही खूबसूरत गाना है यार, बंदे दे दिल च कुछ ना भी चल रहे हो ना तभी उन्हें फील आ जाती है यार ये गाना सुन के। कहो मैं अब क्या करूं। मिले जो सुकून 3 2 1 एंड गो।

0: हेलो सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ दृश्यम 3 की मैं आपको मूवी टिकट्स दे रही हूँ। कपल मूवी टिकट्स इस 3 अक्टूबर को हम मिलके देखने वाले हैं दोपहर के 2 बजे ये फिल्म। सब लोग फिल्म मास्टर यूएई आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये। सो अगर आपको ये फ्री कपल मूवी टिकट चाहिए तो मैं बोल रही थी कि भाई बताओ रीजन तो बताओ।
1: हाय सिमरन, इट्स यशरफ हियर। आई मेट माय पार्टनर, who's my fiance now, on TikTok, and I just liked his smile and I commented and we met like that. Okay. Now that we are engaged,
0: wow,
1: I would love to have Dushyam 3 as my our first movie together.
0: Sweet.
1: So yes, I hope to win and enjoy it as our first movie night together.
0: Kya baat hai,
1: thank you.
0: मूवी डेट होने वाली है आपकी और साथ में उन्होंने एक ये भी भेजा बाद में।
1: Not only that, I am a Punjabi and he's a Pathan.
0: Wow.
1: So it's a different combination who is a bit crazy, but it's good. कमबख्त की स्माइल पे यार फिदा होगी।
0: मिठाइयों ने बहुत सारे पटाखे और आपने मैंने कहा जी ये कपल मूवी टिकट जो है वो जीत ली है। तो मिलते हैं आपसे और फिर मिलवाइएगा आप जिनके साथ इंगेज्ड हुई है तो हम भी मिलना चाहेंगे यार। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर के जरिए जियो बिंदास। एक और लकी विनर बचा हुआ है, आप इसी तरह से मुझे कोई रीजन दीजिए कि आप क्यों डिजर्व करते हैं वॉइस नोट के थ्रू और भेज दीजिए 3311106 पर।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: बात है सर, क्या बात, ये बात है। awesome.

0: अरे लड़ाई कैसी, दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार, सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा, सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट।
4: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
5: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
3: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
6: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
3: The end we've been waiting for, दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
3: Overseas release by Z Studios।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे,
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

आज मैं हूँ और तुम और मोहब्बत है। लेकिन आप ना बहुत लंबे लंबे मैसेज टाइप करके भेज रहे हो, मेरे को नहीं पता है कि आप इतना टाइम हाउ स्वीट आप मेरे लिए निकाल रहे हो, ऑफ कोर्स टिकट के लिए भी निकाल ही रहे हो, है ना। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मुझे बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिख के भेजिए, क्योंकि ये जो कॉन्टेस्ट है ना ये वॉइस नोट पे ही है और जिसके कॉन्सेप्ट ये है कि आपने मुझे बताना है, ठीक है, कि आप ये कपल मूवी टिकट क्यों डिजर्व करते हो। आप मुझे एक एक मिनट के वॉइस नोट्स भी भेज रहे हो। सो आपको 15 से 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स 33-34 कर दीजिएगा यार, इससे ऊपर मत करिएगा। और रीजन बताइए कि आप ये कपल मूवी टिकट क्यों डिजर्व करते हो। दृश्यम 3 इस 3rd अक्टूबर को दोपहर को 2 बजे अगर आप फ्री हैं तभी पार्टिसिपेट करिएगा। सो फटाफट से मुझे वॉइस नोट भेजिए 3311106 पर।

0: Radio Olive Bay. Story of the day. Story of the day.
1: हमारा दिल दिमाग से एकदम अलग है। दिमाग सोचता समझता है, पर दिल छोटी छोटी बातों से खुश भी होता है और बिखर भी जाता है। इसीलिए तो इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर एक एवरेज अडल्ट हार्ट हर मिनट 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है। इस दिल की इमोशनल वेलबींग और फिजिकल हेल्थ दोनों साथ साथ चलती है। तो जब आप अंदर से खुश रहते हैं तो हार्ट ऑटोमेटिकली सेफ फील करता है। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे जो काम दिल को खुशी देता है उसे थोड़ा सा वक्त दो और दिल धड़कने दो।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट
2: टफ काम और भी आसान कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्नल ग्रुप नाउ
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: हाय एवरीवन, मैं हूँ अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
2: 106.3 एफएम रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: आप किसी से इतना प्यार करते हो कि तेरा रास्ता छोड़ू ना, पर कभी कभी छोड़ देना चाहिए।
1: Time with my wife, mm-hmm. and we will get a perfect excuse as a date night if you give us this movie ticket, and we will be always thankful and listening your show, Simran.
0: Thank you so much, Sagar ji, lo ji. बधाइयां मिठाइयां दे बहुत सारे बढ़ा गए, कबल मूवी टिकट हो गई है आपकी। लेकिन आप लोग जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं जीत पाए तो आप सारे शोज को ध्यान से सुनिए, और कल परसों में भी आपको टिकट जो है वो मिलने वाली है, तो टेंशन मत लीजिए।
2: सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं, आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
4: लुलु, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
5: यू, घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
6: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
5: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
6: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।

की मोहब्बत है यार। तो जीत फिल्म के बारे में बात करेंगे। ये फिल्म जो थी ना वो मुकद्दर का सिकंदर से इंस्पायर्ड थी, और इसमें ये जो गाना है ना यारा ओ यारा, बिल्कुल सनी देओल का स्टेप इतना ज्यादा वायरल हुआ था कि बाद में जो थे उनके मीम्स वगैरह भी काफी ज्यादा बने थे। एंड अब बात करें इस फिल्म के दौरान की शूटिंग की, सो साजिद नादियादवाला और तब्बू जो है, ऐसा बोला जाता है कि दोनों को इस फिल्म के दौरान शूटिंग के दौरान प्यार जो था वो हो गया था। एंड सनी देओल ने इस फिल्म में हेयर एक्सटेंशन जो था वो यूज़ किया था, क्योंकि फिल्म के सेकंड हाफ में जब वो वापस आते हैं तो फिर उनके लंबे लंबे बाल। सोया और भी बातें बताऊंगी इस फिल्म के बारे में, थोड़ा सा इंतजार कर लो। वापिस आ गए सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर के, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटूई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: हेलो लिसनर, मेरा नाम है राजपाल यादव। राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। जियो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। रेडियो ओलिव
2: नंबर वन। इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: ਸੋਹਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 7:20:25 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਮੈਸੇਜਸ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਤ ਫਿਲਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸੋ ਦਿਲ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਰ ਮੈਂ ਆ ਫਲੋ ਫਲੋ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਲੱਗੀ ਥੀ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਬਦਲ ਦਿਆ ਕਿ ਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗੀ ਇਹ ਜੋ ਅਡੈਪਟ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ ਇਸਕਾ ਜੋ ਟਿਊਨ ਥਾ ਵੋ ਜੋ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਵਾਲੀ ਥੀ ਨਾ ਦਿਲ ਪੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਤੇ ਹੈ ਸੋ ਉਸੇ ਅਡੈਪਟ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਆ ਥਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕੋ ਲੇਕਿਨ ਡੇਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਐਂਡ ओके सो कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि करिश्मा कपूर के जो पेरेंट्स हो के रणधीर कपूर एंड बबीता उन्होंने 1972 में एक फिल्म में काम किया था दोनों ने जिसका टाइटल था जीत फिर 24 साल बाद आई गेस मेरा मैथ्स अगर सही है तो 24 साल बाद उन्होंने करिश्मा कपूर ने सेम टाइटल के अंडर जो था वो फिल्म में काम किया अब बात करते हैं सनी देओल के घर की जो शूट किया गया था जहां पर वो एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग थी अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग थी जो कि 10th फ्लोर भी थी अब उसमें क्या था कि लिफ्ट तो थी नहीं तो जितना भी क्रू था जितने भी लोग थे हर रोज उनको ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ के जाना पड़ता था क्योंकि लिफ्ट नहीं थी इसकी वजह से वहां पे शूट भी होता था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आलोक नाथ जिन्होंने करिश्मा कपूर के पापा का किरदार निभाया था और करिश्मा कपूर का जो यू नो लव इंटरेस्ट था वो कौन था इसमें सनी देओल और आलोक नाथ यानी कि करिश्मा कपूर के पापा की एज सेम ही थी सही है यार सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर के दिनों जियो बिंदास वापस लौट के और भी बहुत सारी बातें करेंगे रियलिटी चेक होगा और नेम गेम भी होगा
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही रूफ के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 AM to 8 PM, Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit.
2: आने दो बहुत जगह है आने दो केक्स आने दो संडेज आने दो बहुत जगह है
3: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: भाईजान तू आज तक नहीं ले जा पाए। स्टूडियो की हो चुकी सिमरन कौर आपके साथ है
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: यार हम में से आप भी मैं भी हो, हम सब की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हम दूसरों को ये चीज दिखाने की जताने की कोशिश करते हैं कि यार तुम्हारे लिए इतना किया है, तुम्हारा लिए इतना तो करते हो कि तुम, हमको लगता है कि सामने वाला हमारा जो है वो उतना नहीं करता है। हम उसको अपनी बातों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बहुत ही ऐसे ऐसे बहुत तरस वाली बात होती है अपने लिए, जो कि हमको उस टाइम पे नहीं समझ लग रही होती। क्योंकि क्या होता है कि अपनी वैल्यू किसी को बता के एक्सप्लेन करके अगर दिखानी पड़े तो उससे मतलब खराब चीज जो है वो आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है। हमको नहीं समझती, हम फ्लो फ्लो में प्यार प्यार में जो है वो अपना समझाने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि शायद सामने वाले को आपकी वैल्यू समझ नहीं लग रही, आप तो उसका इतना ज्यादा करते हो, आप तो यू नो दिस एंड दैट। लेकिन ट्रस्ट मी, सामने वाले को सब पता रहता है। सो आपको कभी भी आपके अपनों, क्या आपको अपने मॉम डैड या भाई बहन को कभी ये बताना पड़ा कि आप उनसे कितना प्यार करते हो? वो पता है, वो है ही है, वो एक्सप्लेनेशन कभी बोलनी ही नहीं पड़ती है, गलेश और ही बातों में होते हैं उनसे तो। सो ऐसे ही दोस्ती है, प्यार है, इन सारी चीजों में आपको जताना नहीं पड़ता है, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है कि आप सामने वाले का कितना करते हो। सामने वाले को पता है लेकिन अगर वो समझना नहीं चाह रहा तो आप समझाना क्यों चाह रहे हो यार? क्या बात बोली यार सिमरन कौर तुमने। वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली हूँ, गेट रेडी।

0: ਕਰੀ।
1: ਦੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे आप अगर मुझे अपना नाम लिख के भेजेंगे तो मैं आपका नाम जो है अभी के अभी रेडियो पे बोल दूंगी। बट रूल ये है कि नो हाय नो हेलो, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम जो है वो लिख के भेजना है। चलिए अब मैं नाम बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। जरीन, सिमरन, ओके आपका नाम भी सिमरन है। राखी जी थैंक यू सो मच, सईद जी थैंक यू सो मच, अरुंदय जी थैंक यू सो मच, आई होप मैं आपका नाम सही से ले रही हूँ। समीरा जी थैंक यू सो मच, जाना जी थैंक यू सो मच, यूसुफ जी थैंक यू सो मच, वसीफ जी थैंक यू सो मच, रवन प्रीत जी थैंक यू सो मच, लतीफुल्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी थैंक यू सो मच, सागर जी थैंक यू सो मच, राजीव जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। किसी ने ओहो लिख के भेजा, अरे यार ओहो क्या होता है, नाम लिखो। फातिमा यूसुफ जी थैंक यू सो मच, गुरांश जी थैंक यू सो मच, हिफ्जा दनिया जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, हमद जी थैंक यू सो मच, हमदा आई होप मैं आपका नाम सही ले रही हूँ, निहाल जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कामरान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, खिजर हयात खान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। अगला गाना दोस्तों शुरू होने वाला है बस कुछ ही सेकंड्स में, क्विकली अपना नाम लिखी भेजिए। अमित जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रिहान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रीता जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, समीरा नशवा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सईद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एक और सईद हैं थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मुबीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, अजीज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, और नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। अभी थैंक यू मत लिखिए, थैंक यू बाद में लिखिएगा, ठीक है जी। एंड दैट्स इट फॉर आवर, जिन जिन लोगों के नाम ले लिए बेटा अब आप थैंक यू लिख सकते हैं, अपना फेवरेट वाला इमोजी बना सकते हैं। अगले घंटे एक चुटकी सॉन्ग खेलेंगे, सो तैयार हो जाइए उसके लिए भी। 3, 2, 1 एंड गो।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।

पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: Association with Nesto Hypermarket, now open at Old Passport Office, Karafa.
2: Salaam, pranam, namaskar, vanakkam, I am Jackie Shroff.
3: Jackie Shroff.
2: Radio 106.3, Jio Bindas.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: Radio Olive, I'm number one.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ।
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

क्या हाल है यार, आप बताओ क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? खुश रहा करो यार। सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल माहौल।

0: Band.
1: ये खलीज जो है वो खामखा नहीं, हतपिश तो है पर खामखा नहीं।
0: और खेले
2: रेडियो ओलिव पर
3: एक चुटकी सॉन्ग, एक चुटकी सॉन्ग।
4: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: चलो एक चुटकी सॉन्ग में आपको सुनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनो और मुझे बताओ ये कौन सा गाना है। अगर आपने गाना पकड़ लिया है, गाना आपको पता लग गया है, तो क्विकली वॉइस नोट रिकॉर्ड करो, लिखो मत। हे सिमरन, अपना नाम बोलो और बताओ गाना कौन सा गाना है। बढ़िया बात है, नहीं गाना है बताना है वो भी बढ़िया बात है। भेज दो 3311063 पर। एक बार वापस से सुना दूं।

0: फटाफट से गाना गाओ और या फिर बताओ, भेजो 3311063 पर प्लीज वॉइस नोट।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: बवाल काट दिया यार कुणाल गांजा वाला ने। मैं कह रही सुनियो कितना दिखी हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तोड़े नाल और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: एक चुटकी सॉन्ग था ये और आप लोगों ने तो क्या जज्बात बाहर निकाले यार भाई साहब।
3: हाय सिमरन, मेरा नाम है तुफैल अहमद।
0: हाँ जी।
3: और ये गाना है सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों बिघलने लगा।
0: वाह वाह वाह, इन्होंने बहुत लंबा गाया हुआ था लेकिन बहुत सारे जवाब है यार।
4: द सॉन्ग इज सूरज

0: की
1: क्या बात है यार.
2: Hey Simran.
1: Hi.
2: So the song is
0: सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी.
2: आहा. मेरा नाम सना है और ये गाना है कभी खुशी कभी गम मूवी से.
1: थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया.
2: थैंक यू.
3: सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये है क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी धड़का ये दिल
1: जमी चलने लगी. आई नो फ्यू पीपल जो कि जेड को जे बोलते हैं यार. बारिश साफ बधाइयां बजाइयां थे बहुत सारे पटाखे गाना तो यही है दोस्त ये वाला नहीं ये कोई और है.

0: Story of the day. Story of the day.
1: हमारा दिल दिमाग से एकदम अलग है। दिमाग सोचता समझता है, पर दिल छोटी छोटी बातों से खुश भी होता है और बिखर भी जाता है। इसीलिए तो इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर एक एवरेज अडल्ट हार्ट हर मिनट 5 से 6 लीटर ब्लड पंप करता है। इस दिल की इमोशनल वेलबींग और फिजिकल हेल्थ दोनों साथ साथ चलती है। तो जब आप अंदर से खुश रहते हैं तो हार्ट ऑटोमेटिकली सेफ फील करता है। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे जो काम दिल को खुशी देता है उसे थोड़ा सा वक्त दो और दिल धड़कने दो।

जाती हूँ मैं ना, ना, ना, ना। क्यों यार जाने का मन नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है ऐसे ही बैठूं आप लोगों से और बातें करूं और म्यूजिक सुनाऊं।

साहिब, और ये दो आखिरी शो के गाने थे जो कि मेरे जाने के बाद प्ले होने वाले हैं। बाकी म्यूजिक तो भाई 24/7 चलता है रेडियो ऑलिव का, आप सुन सकते हैं जब भी आपका मन करे। एप्लीकेशन को अपने फोन में जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि जब भी आपका मन करे आप रेडियो ऑन कर सके। एंड बाकी हमको सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा रेडियो ऑलिव को। सभी आरजेस भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई यू नो शो के रिगार्डिंग या कुछ भी सवाल है आपका, कुछ भी ऐसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप मैसेज कर सकते हैं। सो अभी के लिए कल शाम को 5 बजे मिलती हूँ आपसे। टिल देन खांदे मिंदे रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे देव डेवल स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Olive Pad, Olive Rewind.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदा

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.